0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिस लड़की से आकाश मुझे कंपेयर कर रहा है वो एक लैब ग्रोन लड़की है एंड आई डोंट कंपेयर माय सेल्फ टू गर्ल्स लाइक दैट एंड आई वाज लाइक एक सेकंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर आई नो हु आकाश इज आई नो वो तुझे किससे कंपेयर कर रहा है लेकिन लैब ग्रोन एंड दैट्स व्हेन माय बेस्टी पिप्ड इन टू टेल मी कि तुझे पता नहीं है व्हाट अ लैब ग्रोन पर्सन इज आई वाज लाइक कि वो लैब में पले बड़े हैं शी वाज लाइक नहीं कि वो नकली हैं जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं दिखते डायमंड्स हैं लेकिन बनते लैबोरेटरी में हैं इसलिए उनमें वो बात नहीं होती जो डायमंड्स में होती है और वैसे ही जो इंसान दिखता सही है लेकिन अंदर से पूरा फेक और प्रिटेंशियस है वो इंसान होता है एक लैब ग्रोन इंसान अगर आपको ये सुनते ही अपने एक्स की याद आ गई आई डोंट ब्लेम यू डार्लिंग दैट्स व्हाई यू डंप्ड हर बट अगर आप अपने एक्स के बारे में बात करना ही चाहते हो अबाउट द लैब ग्रोन ह्यूमन व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
3: ¿Bolía?
4: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
4: बात है? सर आप तो सर पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो,
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे. अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे. अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
5: जी? अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: इनएफिशिएंट, वेरी कॉम्प्लेक्स,
7: क्लमजी और
6: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन.
8: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए जोहो वन ले आओ. जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या HR. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1.
9: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आपके पास इतना काम है, इतनी पढ़ाई है, यू हैव नो टाइम टू मीट हिम, बट द ट्रूथ इज आपकी सोसाइटी में एक हॉट गाय आया है एंड यू मच रादर चेज हिम.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर पकड़े गए तो क्या होगा? बट व्हाटएवर होगा, इफ यू वांट रोशिफिकेशन फॉर दिस स्ट्रेंज लिटिल कन्फेशन, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
3: I'm really good. How are you?
1: Really good से थोड़े से better हो, क्योंकि आपने जो मुझे confession लिखकर भेजी है, that is killer AF and I really want to know the whole story.
3: I know, right? Actually, मेरा कुछ दिन पहले बहुत ही गंदा breakup हुआ and the reason that I told my boyfriend was कि मेरा ex वापस आ गया मेरी life में, but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. The story is upside down.
1: Tell me all about it. तो आपने उसे ये क्यों बोला?
3: माँ या हाँ बोलो.
1: हाँ तो आपने उसे ये क्यों कहा?
3: ओ भाई, उसकी टॉक्सिक माँ भाई इतनी भसर फैला दी उसने मेरी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ. खाना उसके अकॉर्डिंग, जीना उसके अकॉर्डिंग, पहनना उसके अकॉर्डिंग, कहीं जाना उसके अकॉर्डिंग. मेरे से तो टैकल ही नहीं हो रहा था यार. इतनी बार अपने बंदे को समझाया कि थोड़ी स्पेस दे, थोड़ी स्पेस दे, बट नहीं, वो भाई चाटू अपनी मम्मी का मान ही नहीं रहा भाई. मेरे से तो नहीं झेला जा रहा था, तो मैंने इस चक्कर में झूठ बोल दिया. लेकिन अब वही है कि अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट क्या ही बोलूं.
1: सो बेसिकली यू चोज बीइंग सिंगल ओवर बीइंग इन अ relationship with your boyfriend
3: course,
1: and his mom.
3: So toxic because itna time har cheez dusre ke mutabik karna is so toxic.
1: Aur ye to hum school mein bhi nahi karte. Tujhe roshify kar do babe, you'll feel better.
3: Please do, please, please, please.
1: There you go.
4: You've been roshified.
1: Agli baar boyfriend dhoondegi na, uske saath saath uski mummy ko bhi vet karna before dating him. And by
3: of
1: vet
3: course.
1: I mean VET, wet, not WET.
3: Of course, I got it.
1: Thank you so much, Mystery Caller. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही Mystery Caller की तरह कोई confession है, hit me up on Insta या FP. Let's get talking. And while you do that, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
0: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कौन ही ओल्ड फैशन और वट एवर, बट मेरे हिसाब से प्यार इजहार करने का तरीका सबसे बेस्ट है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इट थ्रू अ चिट्ठी।
0: रोशी के लेटर बॉक्स से।
1: और पता है सबसे खूबसूरत बात क्या है कि आई एम नॉट दी ओनली वन हु फील्स दिस सेंटिमेंट। मैंने आपको कितने हफ्ते पहले कहा था कि लेट्स स्टार्ट अ खतों का सफरनामा, और आप मुझे अपने लवर्स के लिए चिट्ठियां लिखकर भेजते रहते हो, विच आई लव रीडिंग आउट, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड स्कूल रोमांस नेवर रियली गोज आउट ऑफ फैशन, और आपकी चिट्ठियां इस बात का प्रूफ है। अच्छा तो एनीवे, तो ये चिट्ठी लिखी है फारिद शेख ने फॉर रिधिमा। मेरी प्यारी रिधिमा, फॉलिंग इन लव विद यू हैज बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी इन दिस लाइफ। मैं अभी भी हैरान हूँ कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत, लविंग और केयरिंग लड़की मुझ जैसे बुद्धू और भोंदू से प्यार कैसे कर सकती है। आई थिंक आई हैव जस्ट बीन लकी। आई प्रोमिस कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, एंड मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं, स्माइलिंग रखूं। एंड प्रोमिस, ये जो रोमांस है ना, जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा फारिद शेख। What a beautiful love letter, Farid. This is so cute. Like, I'm hoping कि काश कोई मेरे लिए भी ऐसी चिट्ठी लिखे। Actually, मैं आपकी इतनी सारी love letters पढ़ती हूँ, आप में से किसी ने मेरे लिए तो कोई love letter नहीं लिखा है। Why don't you change that and send me a love letter for me? मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की spelling है ROCHIE. So find me on Insta या FB for your love letter to me. And whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, एंड आई कैच यू ऑन द अदर साइड।
0: रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Wait, what are you saying? Deepika and SRK are shipped together? Ye news mujhe Gurusha ne batai hai, and she has told me that this is a blind piece of news, which basically means iski koi confirmation nahi hai. But Gurusha aur main iske bare mein discuss kar rahe the ki ye kitna amazing hoga, dude. SRK and Deepika. Pehle it was SRK and PC. SRK को भी चिल नहीं है ना जिंदगी में. उन्हें ये नहीं पता है कि एक जॉक है मिर्ची में जो रात के प्रोग्राम करते करते करते लव एंड रोमांस के बारे में बात करते करते ढूंढ रही है. मे बी ही शुड गिव दैट जॉक अ चांस. नहीं, Gurusha अग्रीज विद मी. बट दीपिका एंड SRK, आर यू गाइज इवन किडिंग मी? अगर आपको लगता है ये न्यूज कैन बी ट्रस्टेड एंड इफ यू थिंक दैट्स ट्रू एंड इफ यू लाइक दिस कपल का थॉट. बट एक सेकेंड, दीपिका का बेबी नहीं होने वाला था? हो नहीं रहा है. It doesn't matter. Whatever your opinion on this blind piece of news is, hit me up and tell me all about it. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. Yaar, SRK, RJs ke baare mein bhi soch lo yaar. On that note, tum kahin mat jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K/5/14A फर्स्ट फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल सुमन
3: जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा. पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पटाख. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू linemtg.com.
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
0: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे तो जिंदगी में वी ऑल लाइक गेटिंग एडवेंचरस और एडवेंचर के नाम पर देयर इज दिस बुक कॉल्ड मदिरा व्हिच टॉक्स अबाउट द रिच कल्चर ऑफ इंडिया जिसमें इंडिजीनियस तरीकों से बहुत सारे इनक्रेडिबल स्पाइसेस और फ्लावर्स यूज करके बहुत ही अमेजिंग लोकली प्रोड्यूस्ड वर्जन्स ऑफ कॉकटेल्स हैं और इसी वजह से बिकॉज दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस मैं पकड़ के लाई हूँ इस किताब के ऑथर पराग शास्त्री को ऑन द मिर्ची हॉटलाइन वेलकम टू द शो पराग
2: हाय रोशी
1: हाउ आर यू
2: वेरी वेरी गुड थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर
1: अरे आई एम अ ह्यूज फैन मैंने आपकी किताब कवर टू कवर पढ़ ली है और मैं जानना चाहती हूँ कि इसे थोड़ा सा ट्वीक करके ठीक है एक मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉकटेल देखी थी जिसमें मैंगो यूज हुआ था एंड इट वाज अ मैंगो मार्टिनी और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा था लेकिन अगर मान लीजिए किसी को घर पर बनाना है इसका एक वर्जन अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए एंड दे डोंट वांट टू मेक इट अ कॉकटेल बट दे वांट टू यूज मैंगो इन अ मोर मॉकटेल वर्जन तो उसके लिए घर में हमारे पास आम रहते हैं इम्प्रेस करने की इच्छा रहती है पर आगे क्या करना है जरा बता दो प्लीज
2: ओके रोशी आई विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड ऑन दिस राइट आई ट्राइड अ न्यू मैंगो कॉकटेल राइट मैंगो बिगेस्ट कॉकटेल लास्ट वीक राइट एंड माय ऑडियंस ऑब्वियसली माय फ्रेंड राइट सॉर्ट ऑफ लिटरली फेल फॉर इट राइट सो आई विल ट्राई एंड टेल यू दैट इट्स ऑब्वियसली मैंगो बेस्ड सो इट हेल्प्स ऑल्सो राइट हमने क्या किया हमारे पास आम का अचार था घर में
1: ओके
2: राइट वी टुक आम के अचार के ऊपर जो हल्का सा ऑयल फ्लोट करता है वी टुक दैट राइट मिक्स्ड इट यू नो सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड इट विद द चॉइस ऑफ आवर बेस लिक्विड ऑफ व्हाइट राइट जो भी था वी स्क्वीज इन हाफ अ लाइम राइट आधा नींबू राइट एंड वी डिड अ मैसिव शेक ऑन इट विथ लॉट ऑफ आइस राइट एंड उसके ऊपर हमने गार्निश किया सम मिंट लीव्स राइट यू कुड ऑल्सो यूज द बेसल राइट वो भी आप कर सकते हैं बट द फ्लेवर वाज सो फैंटास्टिक आई कैन टेल यू राइट एंड बिकॉज ये फ्लेवर लोगों को पता है राइट आम के अचार का फ्लेवर लोगों को पता है राइट एंड दैट वॉज सच अ फैसिनेटिंग कॉकटेल दैट केम थ्रू राइट वेरी सिंपल ऑल योर इंग्रेडिएंट्स एट होम बाहर से आपको कुछ भी नहीं लाना है राइट इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल बेसिक कॉकटेल बट अमेजिंग फीडबैक राइट

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात कोर्सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोशी, आपने कहा है कि गिव लव अ चांस, बट आई हैव हैड 27 ब्रेकअप्स पिछले 24 सालों में, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए?
1: रोशी के डीएम से
0: ये खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा है गुलाम मुस्तफा ने। देखिए गुलाम मुस्तफा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई डू से गिव लव अ चांस, लेकिन आपके केस में ना हमें ये सोचना चाहिए कि ये रिलेशनशिप्स हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं है कि हमने 24 इयर्स में 27 टाइम्स ब्रेकअप कर लिया, रोशी अब मैं क्या करूँ। अब आपको करना ये है कि जब आप अगली बार एक रिलेशनशिप में जाओ ना, उसे रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करना, ठीक है? इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं कि करा, खाया और फिर अगले नूडल्स की तरफ चल पड़े। मे बी दैट विल चेंज द वे यू लुक एट लव। और अगर आपकी भी जिंदगी में गुलाम मुस्तफा की तरह बहुत ही अनोखे सवाल हैं जो आप किसी और से नहीं पूछ सकते हो, मैं तभी तो आपकी जिंदगी में हूँ। I am your Broshi. The name is Mirchi Roshi. Naam ke spelling R-O-C-H-I-E. So hit me up on Insta ya FB and we'll get talking about whatever you do. Kahin mat jana, jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमों बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

काला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

नहीं तुम्हारे दिमाग में गोली मारूंगी और अपने दिमाग में भी, क्योंकि अगर आपका दिमाग मेरी तरह है और आप एक इंसान के कहे हुए फट्टू वर्ड्स पर विश्वास करके उनके एक्शंस को इग्नोर करके ये मान लेते हो कि ये जानू मानू जिंदगी भर का सोलमेट है एंड देन यू गेट लेट डाउन जस्ट लाइक मी, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में और मिला ही क्या है एक्सपीरियंस के अलावा. प्यार तो दूर का सपना है जानू, बट इफ यू आर फीलिंग एज हार्ट ब्रोकन एज आई एम, हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RCHIE. मैं जानती हूँ कि आप मुझे हिट मी अप नहीं करना चाहते, उसे हिट करना चाहते हो, लेकिन उससे जेल में चक्की आप ही पीसोगे ना. सो इट्स बेटर दैट यू गेट इन टच विद मी, वी कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन एंड यू कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Pepe Merchu.
1: Escabala, escabala, sacabala. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Merchi, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको

0: नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये एक महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
0: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
1: बोलो।
0: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
0: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा
0: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे, कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो। ठीक है,
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
0: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर? हाँ कुकर तो है।
0: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो।
1: कुकर चार में?
0: हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा,
0: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
0: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना, खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
0: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
0: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
0: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
0: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
0: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
0: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल।
6: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जनिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आपके पास इतना काम है, इतनी पढ़ाई है, यू हैव नो टाइम टू मीट हिम, बट द ट्रूथ इज आपकी सोसाइटी में एक हॉट गाय आया है एंड यू मच रादर चेज हिम.
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर पकड़े गए तो क्या होगा? बट व्हाटएवर होगा, इफ यू वांट रोशिफिकेशन फॉर दिस स्ट्रेंज लिटिल कन्फेशन, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफपी, वी विल गेट टॉकिंग. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
2: I'm really good. How are you?
1: Really good से थोड़े से better हो, क्योंकि आपने जो मुझे confession लिखकर भेजी है, that is killer AF and I really want to know the whole story.
2: I know, right? Yeah. Actually, मेरा कुछ दिन पहले बहुत ही गंदा ब्रेकअप हुआ एंड द रीजन दैट आई टोल्ड माई बॉयफ्रेंड वॉज कि मेरा एक्स वापस आ गया मेरी लाइफ में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. द स्टोरी इज अपसाइड डाउन.
1: टेल मी ऑल अबाउट इट. तो आपने उसे ये क्यों बोला?
2: माँ यार. हाँ बोलो.
1: हाँ तो आपने उसे ये क्यों कहा?
2: ओ भाई, उसकी टॉक्सिक माँ भाई इतनी भसड़ फैला दी उसने मेरी लाइफ में, मैं क्या बताऊँ. खाना उसके अकॉर्डिंग, जीना उसके अकॉर्डिंग, पहनना उसके अकॉर्डिंग, कहीं जाना उसके अकॉर्डिंग. मेरे से तो टैकल ही नहीं हो रहा था यार. इतनी बार अपने बंदे को समझाया कि थोड़ी स्पेस दे, थोड़ी स्पेस दे, बट नहीं, वो भाई चाटू अपनी मम्मी का मान ही नहीं रहा भाई. मेरे से तो नहीं झेला जा रहा था, तो मैंने इस चक्कर में झूठ बोल दिया. लेकिन अब वही है कि अब थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, बट क्या ही बोलूं.
1: सो बेसिकली यू चोज बीइंग सिंगल ओवर बीइंग इन अ relationship with your boyfriend and his mom.
2: So toxic, because itna time har cheez dusre ke mutabik karna is so toxic.
1: Aur ye to hum school mein bhi nahi karte. Tujhe roshify kar du babe, you'll feel better.
2: Please do, please, please, please.
1: There you go.
3: You've been roshified.
1: अगली बार बॉयफ्रेंड ढूंढेगी ना, उसके साथ साथ उसकी मम्मी को भी वेट करना बिफोर डेटिंग हिम. एंड बाय वेट आई मीन VET, wet, not WET.
2: Of course, I got it.
1: Thank you so much, Mystery Caller. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FP. Let's get talking. And while you do that, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: प्यार में चमको जैसे चुगनू।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गाना बजा दूं।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Mirchi. Fresh Mal.
3: Desi swag aur high energy dance vibe ke saath suno. Viyah karwa do ji.

गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विवाह करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैं हूँ ना, ये पिक्चर कोई खास नहीं थी लेकिन ये डायलॉग बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. तो देयर्स दिस गाय दैट आई एम क्रशिंग ऑन, और आज उसका फोन आया एंड सेड यार ऑफिस जाने से पहले मिलते हो जाएगी, आई एम हैविंग अ काइंड ऑफ बैड डे एट वर्क. तो मैं मिलने गई उसे, हमने कॉफी पी एंड ही सेड कि यार पता नहीं कई बार लगता है कि शायद गलत नौकरी में हूँ मैं. एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, अगर तुझे ऐसा लगता है तो छोड़ दे अपनी नौकरी. एंड ही सेड कि जब तक दूसरी नौकरी मिलेगी तब तक खाना कैसे खाऊंगा. तो आई सेड यार मेरे घर में खाना बनता है, और एक महीने नहीं, छः महीने नहीं, एक साल, दो साल, तीन साल, जब तक यू फाइंड द जॉब ऑफ योर ड्रीम्स, मैं हूँ ना, आई विल मेक श्योर कि तू भूखा नहीं सोएगा. एंड ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ही सेड रोशी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, दैट आई विल डिपेंड ऑन अनदर पर्सन टू फुलफिल मी. लेकिन द फैक्ट कि तूने ऐसा कहा है ना, इट काइंड ऑफ गिव्स मी रीजन टू जस्ट गो बैक एंड गिव माई जॉब अनदर शॉट. एंड आई वॉज लाइक मैंने ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कहा है, लेकिन हाँ मुझे पता है दैट आई मेंट इट फ्रॉम माई हार्ट एंड ही फेल्ट इट फ्रॉम हिज हार्ट. कई बार एक छोटा सा डायलॉग मैं हूँ ना एक रिलेशनशिप को कितना डीप सीमेंट कर देता है ना. अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ये नहीं कहा है एंड यू रियली फील इट, आई थिंक यू शुड से इट. आपके रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ आ जाएगा, आई प्रॉमिस. और आपके रिलेशनशिप में कोई भासर.com है ना, देन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड मैं हूँ ना. ऑनेस्टली जिसके पास लव होता है ना उसके पास सब होता है, एंड आई Love you loads.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirchi, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
2: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा हूँ सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: कुकड़ू को मिर्ची मुर्गा नवेद के

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी 1971 की फिल्म गुड्डी के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जया बच्चन तब जया भादुरी थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और अमिताभ का इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमिताभ जया को पहले एक मैगजीन में एक प्रिंट एड में देख चुके थे और थोड़ी बहुत ऐसे इंक्वायरी भी की थी कि ये लड़की कौन है। जबकि जया ने अमिताभ को नोटिस किया था जब वो पुणे में FTII में पढ़ रही थी और अमिताभ वहां पर किसी काम से आए थे, तो जया को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अच्छा, फिर इनकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर्स थी 1972 की एक नजर। फिर जब जंजीर फिल्म में इतने लंबे इतनी भारी आवाज वाले इस नए एक्टर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब जया बच्चन ने उनके साथ काम किया और वहीं से बात जो है देखिए पक्की हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana.
2: Ya bana.
1: Murga, murga. Nabiyat wala murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल।
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं।
4: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

राकेश रोशन साहब की एज डायरेक्टर जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ये फिल्म थी 1987 की खुद गर्ल्स और उनकी मन्नत ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। जी नेचुरल हेयर लॉस को कवर करने का अच्छा तरीका नहीं नहीं, उनका नेचुरल हेयर लॉस नहीं था, उन्होंने वाकई में ऐसी मन्नत मांगी थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और फिल्म हो गई सुपरहिट, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे शेव कर लें। लेकिन जब इनकी अगली फिल्म शुरू होने वाली थी ना 1988 की खून भरी मांग, तब उनको एक रात पहले नींद नहीं आई कि यार मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था ऊपर वाले से, वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुबह सुबह जो सबसे पहला काम कराया वो ये कि बाबर को बुलवा के और अपना सर मुंडवा लिया। उनका ये लुक सबको इतना पसंद आया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर वैसा ही लुक रख दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only.

नाम लिख लिया। बिन को

0: वो कौन सा पहला गाना था जो सरोज खान ने श्रीदेवी के लिए कोरियोग्राफ किया था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सरोज खान ने शेयर किया था, सुनिए।
1: एक कैमरामैन है अकबर, एक दिन वो मेरे घर पे आए और बोले जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। मैं बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा जा देख। और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी, तो मैं बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। घर आए तो मेरे को फोन आया सुभाष जी का, बोले सरोज गाना तैयार है, कर्मा के लिए गाना तैयार है, आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया, तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, तो मैं बोली श्रीदेवी मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही, सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ, क्यों नहीं नाचेगी।
0: तो ये शुरुआत कर्मा से हुई, उसके बाद फिर चालबाज, चांदनी, मिस्टर इंडिया, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें हीरो थे न्यू कमर राकेश रोशन। हालांकि इसमें हीरो का कोई खास रोल नहीं था, मेन रोल हीरोइन का था। हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो भी उस टाइम पे रिलेटिवली नई थी। इसमें बलराज साहनी साहब भी थे, लेकिन ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का पागलपन सवार था लोगों पर। राजेश खन्ना आराधना फिल्म के बाद इतने हिट हो गए थे, ऐसे सेंसेशनल हो गए थे कि उनकी जो फिल्म आ रही थी, अच्छी बुरी गुड एवरेज, लोग देखे जा रहे थे, उन्हीं को हिट कराए जा रहे थे। उस चक्कर में ये जो और अच्छी फिल्में साइड साइड में आ रही थी ना, वो इतनी नहीं चल पा रही थी। ये फिल्म चली थी, बट जितना सक्सेस आई थिंक ये डिजर्व करती थी, उतना इसको उस टाइम पे नहीं मिला। इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

बहनों भाइयों, 1985 का सुपरहिट गीत जो गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुन साहिबा सुन। मिड 80s में दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर, लेकिन आपको पता है इस गाने की ट्यून ओरिजिनली मिड 50s में कंपोज हुई थी। जी, शंकर जयकिशन ने ये ट्यून कंपोज की थी अजंता नाम की मूवी के गाने के लिए, जो फिल्म बाद में नहीं बनी थी, राज कपूर साहब की ही वो फिल्म थी, लेकिन ये ट्यून अनयूज्ड पड़ी हुई थी। तो रविंद्र जैन जब राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, इस ट्यून को इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। हसरत जयपुरी साहब ने ये गाना लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और ये सुपर

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियाँ, दावतें,

1987 की फिल्म ईमानदार का एक बहुत पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो वर्जन रखा गया था वो उनकी आवाज वाला नहीं था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना था और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है या तेरा ही दर्द छुपा रखा है, आई थिंक दोनों था। एनीवे, सो किशोर कुमार की आवाज में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फाइनल वर्जन सुरेश वाडकर की आवाज वाला रखा गया था, जिसका रीजन ये सुनने में आता है कि ये इस फिल्म में गाना संजय दत्त पे पिक्चराइज था, एंड संजय दत्त उस टाइम काफी नए थे और सुरेश वाडकर भी उस टाइम नए थे, तो उनकी आवाज संजय दत्त पे ज्यादा सूट कर रही थी एज कम्पेयर टू किशोर कुमार, बिकॉज किशोर कुमार की आवाज तब तक काफी मच्योर, काफी पॉपुलर हो चुकी थी। सो टू गिव दैट नोवेल्टी फैक्टर, सुरेश वाडकर की आवाज वाला जो वर्जन है वो फिल्म में रखा गया। सुरेश वाडकर के साथ इसमें आशा भोसले की आवाज भी है, प्रकाश मेहरा ने ये गाना लिखा है, कम्पोज बाय कल्याण जी आनंद जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

0: राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ गाना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये तो आप जानते हैं ना कि राजेश रोशन ऋतिक रोशन के चाचू हैं। और कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली पे जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी रोशन करके, उसके लॉन्च पे ना ऋतिक रोशन ने राजेश रोशन साहब के कंपोज किए हुए गाने के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी, सुनिए।
2: वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के प्यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना।
0: आ हा हा, बहुत अच्छा गाया, आगे से नहीं गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो यही गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

रंजीत साहब की एज विलन शुरुआत हुई थी 1970 की फिल्म सावन भादो से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली 1971 की फिल्म शर्मीली से, जिसमें उनका बहुत ही ढेंटड़न टाइप का नेगेटिव रोल था। लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पे ना बहुत ही फनी चीज हुई थी। रंजीत साहब की टिपिकल पंजाबी फैमिली, उनका पूरा टब्बर जो है वो फिल्म के प्रीमियर पे आया था। उनका इतना नेगेटिव रोल देख के ना वो इतने अपसेट हो गए कि बीच फिल्म में से उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब रंजीत साहब वापस घर गए तो पूरा परिवार गुस्से में बैठा हुआ था उनकी क्लास लेने के लिए कि ये तू की करदा पिया है, ये तेरा काम है। तो इस तरह से उनके विलन वाले करियर की शुरुआत हुई थी। कितनी क्यूट होती है फैमिलीज भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

ओए होए, थोड़ा उदास गाना, लेकिन फिल्म का नाम बड़ा हैप्पी। आप आए बहार आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे याद है इस फिल्म में ना राजेंद्र नाथ जो कॉमेडियन होते हैं उनका नाम विस्की होता है। कि पुरानी फिल्मों में विलन्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जैसे मैं ढूंढ रही थी तो राजेंद्र नाथ साहब का ही नाम फिल्मों में क्या क्या रहा है, पोपटलाल, डिफू, प्यारे, चिंटू, पांडू, झटपट सिंह, विलायती राम, गोपू चंद, मनमौजी। इसी बात पे मौज मस्ती वाला गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
1: हाँ बोलिए
2: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
2: सर, पूरा बता।
1: क्या करो भैया, कहाँ
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
2: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, पैसे
2: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पटाक। लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu.

तो 1974 की रोटी फिल्म मनमोहन देसाई साहब की पहली फिल्म थी जो कादर खान साहब ने लिखी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कादर खान ने जो इस फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखे ना, वो सुन के देसाई साहब इतने खुश हो गए उछल पड़े वो, मतलब यहाँ वहाँ कंट्रोल में नहीं आ रहे थे वो। खुशी में उन्होंने कादर खान साहब को एक टेलीविजन गिफ्ट किया, एक घड़ी गिफ्ट की। और जब उनसे पूछा कि आप ये डायलॉग्स लिखने का कितना पैसा लेते हैं, कादर खान साहब ने कहा 21,000 रुपए। तो देसाई साहब ने उनको कहा कि रबिश, आपको 1,21,000 मिलेगा। भाई ऐसे मालदार दिलदार लोग हम सबको जीवन में मिलते रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1984 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म उत्सव शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। इनफैक्ट जो रोल शशि कपूर साहब ने प्ले किया था ना, वो पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, मतलब उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन किस वजह से वो नहीं कर पाए, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए शशि कपूर साहब ने इस बारे में क्या कहा था।
1: अमिताभ जी काम करने वाले थे क्योंकि पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उनके हर शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम एक डेढ़ साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में।
0: वेल, बच्चन साहब की सेहत अगर ठीक भी होती तो भी वो इस फिल्म में काम नहीं करते, क्योंकि सिलसिला फिल्म के बाद तो रेखा के साथ काम करने का सिलसिला खत्म हो गया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subha karein start chustiyon mein. Cricket se lekar soccer ka shor, music, masti and much more. Success aur finance ka dose. Weekdays 8 se 11 har roz. News aur masti ka silsila. Mirchi Mornings with Priscilla. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1970 का सुपर डुपर हिट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आन मिलो सजना का ये गाना जो है, इसको शूट करने में ना बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज सूरज ढलने का सनसेट का शॉट लेना था जो हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली किसी तरह हुआ और सूरज ढलने पे ना मुझे राहत इंदौरी साहब की दो लाइन याद आ रही है। दिन ढल गया तो रात गुजारने की आस में, सूरज नदी में डूब गया और हम ग्लास में। ये सबके अपने अपने ग्लास होते हैं। मेरे ग्लास में रात को पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी होती है, उससे कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो कम हो जाता है, नींद आने में मदद मिलती है। ये नींद ना आने की बड़ी भयानक बीमारी सी लग गई है जीवन में।
1: जीवन में न नींद आती है, न मोहब्बत आती है, न कोई आता है, बस याद आती है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?

0: दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो
1: नहीं
0: स्पीड
1: ऐसा
0: इतनी स्लो हो
1: नहीं,
0: जाती है
1: वो कोई
0: इसमें।
1: वो सारी सारी चीजें हो जाएगी। आप समझिए सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ, फुल एड्रेस
0: एड्रेस है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर, तो इंटरनेट
1: कोई
0: चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग
1: नहीं,
0: होने
1: कोई वो
0: लगा।
1: प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
0: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
1: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
0: मेरा सनसाइन कैंसर है। एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब 1-2 दिन बिल्कुल ठीक चला
1: वो
0: जब
1: ठीक हो
0: मैंने
1: जाएगा, ऐसी कोई
0: चलाया
1: प्रॉब्लम नहीं है।
0: दवाई
1: ये
0: का।
1: कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकता हूँ मैडम?
0: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है।
1: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
0: बी पॉजिटिव 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
1: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
0: राहुल शर्मा।
1: राहुल
0: ये ठीक
1: शर्मा।
0: कैसे होगा, मुझे
1: ये
0: बता तो
1: वही तो
0: दो।
1: मैं आपको, अरे
0: आप
1: मैडम
0: सबसे डिटेल मांगे
1: नहीं
0: जा
1: तो
0: रहे हो,
1: डिटेल,
0: कुछ
1: या
0: ठीक करने के लिए डिटेल
1: सुमन
0: थोड़ी ना
1: जी
0: चाहिए
1: आप
0: होती
1: अपनी
0: है।
1: पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? क्या रूँ
0: सबसे वो मांगे जा
1: नहीं
0: रहे हो
1: तो मैं,
0: डिटेल्स की,
1: अरे
0: कोई हल
1: मैडम
0: होती
1: आप,
0: है?
1: मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
0: वही आपको मैंने कंप्लेन कर दी कि
1: सुन
0: मेरा
1: सुन
0: क्या,
1: सुन
0: हम
1: सुन
0: कैसे
1: सुन
0: बातें
1: सुन सुन
0: करते हैं?
1: पहली बात तो ये है कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये है कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आप, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
0: नहीं खाया भी नहीं है।
1: दोबारा कॉल करेंगे, आपने क्या वक्त लिया, आप बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वक्त है।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
3: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot,

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बच्चों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही उनकी सोच, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर की फाउंडेशन बनाते हैं। आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, क्या होता है कि वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। अब कोई क्लास 4 है, 5 में है, 6 में है, 10 में है, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं हमारा हुनर क्या है। और उस जगह पे जहाँ पे शायद हमें लगता है कि हमारे हुनर को निखारा जाएगा, हमें कोचिंग मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, उस समय आप अगर कुछ लोगों को ही बढ़ावा देंगे तो हमारा क्या होगा?
4: अगेन, नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू बी। सी, इसीलिए तो फिर टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेरेंट्स और टीचर्स का। क्योंकि देखो, अभी यहाँ पर वो केवल उनको स्पोर्ट्स से ही अलग नहीं कर रहे हैं, ये कोई डांस या स्पोर्ट्स की बात नहीं है, पर रिजेक्शन।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: जो डीपर इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर पड़ा है, आई एम नॉट गुड
3: इनफ, वो बैठ जाएगा,
4: वो चीज बैठ जाएंगी। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट ना, वो जो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं उस समय पर एम्पावर करना, हर एक की विशेषता को देखना, उसको कार्य में लगाना। इसीलिए जो भी हमारे टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाकी सब प्रोफेशंस में यू आर नॉट क्रिएटिंग फ्यूचर जेनरेशन। टीचर एक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप पूरी एक फ्यूचर जेनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं, और आप सिर्फ उनके स्किल टैलेंट को क्रिएट नहीं कर रहे, वो तो वो खुद भी कर लेते हैं। आप उनको कितना इमोशनल

0: मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, कितना मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, कितने वो ऐसे लोग हैं कि दुनिया में जाकर के किसी भी एडवर्सिटी, किसी भी चैलेंज, किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं और कहेंगे नहीं ये उस टीचर ने मुझे उस समय ऐसा कहा था। सो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द टीचर, बट अगेन आई फील अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस है तो विक्टिम मोड में जाने की जगह, ठीक है ना, विक्टिम मोड में मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी टीचर ऐसा, मेरा स्कूल ऐसा, लुक एट ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव। ये हमेशा हमारे साथ होता है, सब कुछ ठीक होगा, जो एक चीज ठीक नहीं होती ना
1: उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं,
0: मन वहीं पर जाता है। कुछ ये ऐसा ही है, वो तो तब से कहते हैं एडम ईव के समय से, पैराडाइज में थे, परफेक्ट था, वेदर परफेक्ट था, सब प्रकार के फ्रूट्स थे, वन फॉरबिडन फ्रूट। तो आपके पास कितनी भी ब्लेसिंग्स हो बट यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट वन थिंग व्हिच इज नॉट राइट इन योर लाइफ, शिफ्ट।
1: सही बात,
0: प्लीज ब्रिंग दैट शिफ्ट। मे बी देयर इज वन थिंग व्हिच इज नॉट ओके,
1: सही बात,
0: बट मे बी देयर इज सो मेनी अदर थिंग्स। यू हैव गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, कोई और टीचर है जो अच्छा है, कोई और टैलेंट है, यू हैव अ गुड सेट ऑफ पेरेंट्स। आजकल देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर ग्रोइंग अप इन अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली।
1: हां बिल्कुल सही कह रहे
0: हैं, सो वी कैन काउंट ऑन आवर ब्लेसिंग्स एंड बी ग्रेटफुल।
1: जी जी, ये
0: सब कुछ परफेक्ट हो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो मूव ऑन, डोंट गेट स्टक।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: ऋतु है अहमदाबाद से, वो लिखती हैं कि मैं बार बार अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना चाहती हूँ, जैसे सुबह जल्दी उठना या फोन से दूर रहना, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उन्हें छोड़ देती हूँ। लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए?
3: दृढ़ता की कमी है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन।
2: जी,
3: सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्टार्ट भी करते हैं। 31 दिसंबर को तो ये खास होता है। एक न्यू थॉट, एक न्यू रेजोल्यूशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि दृढ़ता। तो कोई भी एक अच्छा थॉट लेना कि सुबह जल्दी उठना है, वो बीज है। लेकिन बीज ऐसे ही फलीभूत नहीं होता, उसको रोज पानी डालना पड़ता है। तो अगर आपने कोई थॉट लिया भी है, लेकिन अगर आप डिटर्मिंड नहीं होंगे, डिटर्मिनेशन एक पावर है, तो आप जब उस पावर से वो चीज रोज रोज करेंगे तो ही रिजल्ट निकलेगा। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट बींग डिटर्मिंड, देन पुटिंग इट इन टू प्रैक्टिस, देन फेसिंग द चैलेंजेस जो उस रोड पर आएंगे। समझो, आप रोज सुबह उठने का ही सोचते हैं, ऑफिस में कोई जरूरी प्रोजेक्ट आ जाएगा, कोई और घर में बात आ जाएंगी, पर उस चीज पर, इसलिए कहा ना, डिटर्मिंड करना है तो करना ही है, कंसिस्टेंट होना, तो वो चीज हो जाएंगे, दृढ़ता की शक्ति को बढ़ाए।
2: एक काम और कर सकती हैं ऋतु, मेरी तरफ से सजेशन है, एक पॉडकास्ट है, बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट है, जिसका नाम है बियॉन्ड द टू डू लिस्ट। ये अगर आप सुनेंगे तो इससे भी शायद आपको, जैसे कभी कभी सिस्टर कहती हैं कि एक्सटर्नल जब कुछ चीजें आप अच्छी देखती सुनती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये भी कोशिश करिए, शायद आपके काम आ जाए।
3: आपने बहुत अच्छी बात की कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना, तो हमें ऐसी चीजें थोड़ा सुनना चाहिए, हम मोटिवेटेड होते हैं।
2: हाँ।
3: आखिर तो डिटर्मिनेशन की भी जो पावर है वो कहाँ से आएंगे? कोई मोटिवेटिंग फैक्टर तो चाहिए। तो अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, ये सारी चीजें हमें वो जैसे एक
2: प्रोत्साहन देती है,
3: पुश का काम करती है।
2: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा तब दिखा पाते हैं जब वो उन्हें सिर्फ जज नहीं समझने की कोशिश भी करते हैं, स्पेशली जब बच्चा परेशान हो। आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस पे एक पेरेंट वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, यार कभी कभी मेरे लिए क्या होता है कि ऐसी बातें जब घर पे होती है ना, तो मैं उनको अपनी राय देने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने भी अभी कहा कि बच्चे पॉजिटिव पे ध्यान दो, कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं उस पे ध्यान दो। तो हमें बच्चे चुप करा देते हैं कि मम्मा आई एम फेसिंग इट, नो यू आर नॉट फेसिंग इट, तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है। तो कहते हैं कि पहले तो ये बात भी होती थी, अब तो वो श्रग शोल्डर करके चले जाते कि मम्मा डजंट अंडरस्टैंड, डैडी के पास टाइम नहीं, ही डजंट अंडरस्टैंड। तो द पेरेंट इज ऑल्सो फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट टाइम कि मैं अपने बच्चे को सही दिशा की तरफ कहां से, उसमें ये माइंडसेट कैसे बैठाऊं कि बेटा दिस इज लाइफ, ऐसा ही होगा, तुमको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव सोच के तुम आगे नहीं बढ़ोगे।
4: जब बीमार होता है ना या बुखार होता है तो खीर भी कड़वी लगती है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: होती तो नहीं है ना। तो जिस समय पर वो बीमार है या दर्द में है और हम उस समय उनको कुछ कहते हैं, दे माई श्रग देयर शोल्डर्स, बट इट इज नॉट कि वो चीज उनको हेल्प नहीं करेगी, रजिस्टर होती है। केवल जो उनका रिस्पॉन्स होता है उस समय वो, बिकॉज दे हर्ट ना उस समय, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग परफेक्ट फॉर देम। अब बीमार है, आप उसको खिचड़ी भी खिलाएंगे तो उसकी हेल्थ को अच्छा ही करेगी। आप उसको कुछ मीठा भी खाने के लिए देंगे, सो जो उसका काम है वो करेगी, जो फूड का नरिशमेंट उसको मिलेगा, लेकिन उसको सब कुछ क्या लगेगा,
3: कड़वा ही लगेगा।
4: तो आप ये कहेंगे ले मैंने तो इतने प्यार से बनाया, मैंने तो इतना मीठा बनाया, और ये देखो इसकी महिमा करने की जगह और ही कह रहे हैं कि ये तो कड़वा है, बीमार है।
3: तो पेरेंट को भी हर्ट में नहीं जाना उस समय, ये नहीं सोचना कि यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपना काम करते जाइए।
4: यस, मना एक पेरेंट को तो बार बार वो चीज कहनी होती है। समटाइम्स जिस समय आप कह रहे हैं वो उतना उसको अगर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मे बी बिकॉज दे आर हर्ट, एंड आई ऑलवेज से लुक फॉर द राइट मोमेंट।
3: हाँ बिल्कुल,
4: ऐसे समय जरूर होते हैं कि आप भी स्टेबल हैं, वो भी स्टेबल हैं। हर समय तो कोई हर्ट नहीं होता ना। अभी अभी हो सकता है स्कूल में कोई इंसिडेंट हुआ, वो हर्ट है, आप उसी दिन समझाने की कोशिश करते हैं।
3: सही बात है।
4: आप कहते हैं वो ठीक हो जाए, क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स बच्चों से अटैच्ड होते हैं।
3: हाँ।
4: तो उनकी खुशी में पेरेंट्स की खुशी होती है।
3: जी बिल्कुल।
4: तो वो सोचते हैं ये कैसे भी करके ठीक हो जाए, क्योंकि ये ठीक है तो हम ठीक हैं।
3: हम ठीक हैं। हाँ।
4: Rather the whole point is आप ठीक रहो, आप कंफर्टेबल नॉर्मल रहो, एंड व्हेन ही बाउंसेस बैक हैव अ टॉक। और बहुत करके हम नहीं करते बात, हम कहते अभी तो सब ठीक चल रहा है ना।
3: हाँ।
4: चलो जितने दिन ठीक निकल जाते हैं अच्छा है।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
5: Type C cable के साथ phone तो charge कर लोगे, खुद को कैसे charge करोगे? Mirchi Recharge Mornings सुबह 6 से 8 Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy. It's hot.
1: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
3: विश्व लिख रहे हैं कि मुझे लाइफ में स्टक फील होता है, जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता तो आप मोटिवेशन कैसे बनाए रखते हैं, इस बारे में बताइए।
4: ऐसे मोमेंट्स हम सबके जीवन में आ जाते हैं, स्टक हम उसको कहते हैं। हमें लगता है कि वी हैव प्लान्ड आवर लाइव्स इन अ सर्टेन वे एंड समटाइम्स इट इज टोटली डिफरेंट
3: फ्रॉम व्हाट वी प्लान्ड।
4: तो हमें कई बार लगता है कि वी आर वेरी स्टक, वी आर नॉट ग्रोइंग। समटाइम्स आई फील दोज आर द एग्जैक्ट मोमेंट्स व्हेन यू आर ग्रोइंग।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
4: सच में, क्योंकि कई बार आपको ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल अकम्पलिशमेंट में लगती है।
3: लेकिन
4: कभी कभी स्टक होना और चीजें आपके अनुसार न चलना, आपकी जो उस समय पर एक्सेप्टेंस पावर बढ़ती है, वो एक्सेप्टेंस पावर कभी भी नहीं बढ़ती है। तो एक्सेप्टेंस पावर है, अकोमोडेट करने की पावर है, लेट गो करने की पावर है, वो सारी पावर्स कई बार तब बढ़ती हैं जब आप स्टक होते हैं। यू नो, इवन लेटिंग गो दैट लाइफ हैज टू बी दिस वे, हमारी प्लानिंग और डिवाइन प्लानिंग कई बार बहुत अलग होती है। और डिवाइन प्लानिंग में जो मैजिक छिपा होता है वो कई बार उस समय हमें नहीं दिख रहा होता। इसलिए फिर वो जो गीता की लाइन है, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। तो उस चीज के ऊपर फेथ रखकर डोंट टेल योरसेल्फ दैट यू आर स्टक। मे बी थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, दैट्स इट। इट इज जस्ट नॉट गोइंग द वे यू हैड प्लान्ड, बट इट इज परफेक्ट।
3: एब्सोल्युटली,
4: इट इज परफेक्ट, एक्यूरेट, एंड देयर इज समथिंग वेरी गुड स्टोर्ड इन दैट।
3: कहते हैं कि लाइफ हैपेंस व्हेन यू बिजी मेकिंग प्लान्स।
4: या
3: तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सब सही है, आप सही जगह पे हैं। यू आर एग्जैक्टली व्हेयर यू नीड इट।
4: या
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बच्चों से उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर बात करने का सही समय कौन सा होता है? क्योंकि हर कॉन्वर्जेशन का एक राइट इमोशनल टाइमिंग होता है. आइए इस कंफ्यूजन को समझें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: शायद ये सोच रहे हैं कि जितने शायद ये होता है कि सब ठीक ही होगा इसलिए सब ठीक है, इंसान इसलिए इस करके उस समय बात नहीं करता. हाँ. क्योंकि जब भी बात करता है तब रिजेक्ट हो जाता है कि भाई, तो उसको लगता है कि अब ठीक है मतलब सब इसकी जिंदगी में सही होगा. हाँ. तो अब बात करने का फायदा
4: बात
3: नहीं
4: है. करे फिर कोई बात निकल जाए फिर इसका मूड खराब हो जाए. बट नो, यू नो द बेस्ट टाइम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इज व्हेन बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, टीचर एंड चिल्ड्रन, बोथ पार्टीज, बोथ पीपल अक्रॉस द टेबल आर इन अ स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड.
3: बहुत अच्छी बात कही आपने, अक्सर ऐसे नहीं सोचते हम.
4: बात रजिस्टर कैसे हो गया, आप देखिए आज पढ़ाई भी है कुछ भी है, अगर आपको उसको अब्सॉर्ब करना है, आप उस पे काम तो बाद में करेंगे पर आपको अब्सॉर्ब करके अगर रिफ्लेक्ट भी करना है
3: जी,
4: तो आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में तो होना चाहिए.
3: बिल्कुल,
4: ना
3: बिल्कुल.
4: हर्ट चीज पर तो आप अगर स्पिरिट पे लगाओ तो क्या होता है,
3: जलेगा.
4: एनीथिंग दैट इज गुड ऑल्सो फॉर द वुंड, वो भी उस समय जलता है. तो अच्छी बातें भी उस समय अच्छी नहीं लगती है.
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कुछ सवाल आए हैं सिस्टर श्रेया। तो पहले हैं सुयश लाढ़ा जी हैं पुणे से। वो लिखते हैं कि डर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं या इसे कंट्रोल कैसे करें, जैसे कि किसी अपने को खोने का डर, बीमारी का डर, फेल होने का डर या कुछ बुरा होने का डर। प्लीज हेल्प मी।
2: डर वैसे देखा जाए तो कमजोर मन की निशानी है, क्योंकि जिन चीजों की बातें उन्होंने लिखी है वो सब हमने अक्वायर की है। चाहे वो
1: सही बात है,
2: और वो सब छूटनी है एक न एक दिन। तो डर उनको छूटने का नहीं है, चाहे वो आपकी खुद की बॉडी है, आपका कोई लव्ड वन है, कोई पोजीशन है, इनमें से कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं।
1: सही बात है,
2: छूट सकती है। इफ आई से कि नहीं नहीं कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, तो ये तो सत्य नहीं है। सत्य तो यही है कि जो चीजें आपने अक्वायर की है वो कभी ना कभी छूट सकती है।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन दूसरा सत्य ये है कि जो चीजें आपने अक्वायर की है उनको इंजॉय करना जरूरी है। कमजोर मन क्या कर रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनसे अटैच हो रहा है, खोने से पहले अपने मन में देख रहा है कि मैं कहीं ये खो ना दूं, मैं ये कहीं खो ना दूं।
1: सही बात है,
2: ये थॉट उनको डर क्रिएट कर रहा है। तो आप पहले इस जीवन के सत्य को एक्सेप्ट करें कि ये सब चीजें हमने जो अक्वायर की हैं ये पेरिशेबल है, इनमें से कुछ भी छूट सकता है, लेकिन जब तक ये हमारे साथ है क्यों ना हम इसका सुख लें, हम इसको एंजॉय करें, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हैं, चाहे वो हमारा करियर है, हम उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें और इस थॉट को अपने अंदर से खत्म करें।
1: क्या बात है, वैसे भी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जब तक डर से डरोगे, डर आपको उतना ही डराएगा। जिस दिन आप डर को डराओगे उस दिन डर आपसे डरेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 AM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: क्या स्कूल में टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स पर भी अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है और क्या एक्सपेक्टेशंस कभी उनके लिए बर्डन बन जाती हैं? आइए इस बारे में जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक बच्चे की तरफ पॉइंट किया जब हम बात कर रहे थे स्कूल के प्रॉब्लम्स को लेके, कि आप उससे पूछिए ये टीचर का पेट है। तो बच्ची जो है वो बहुत हसमुख थी, वो आई बोली मैं टीचर की पेट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई भी अच्छा करती हूँ, तो इनको लगता है मैं टीचर की फेवरेट हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। कहती है कि ये बहुत तकलीफ है कि मुझे इन लोगों को लगता है मैं टीचर की पेट हूँ। कभी कभी इसका भी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि टीचर के उस पे क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं हर बार लेना नहीं चाहती। तो फिर मैंने दूसरों की तरफ मुड़ के कहा कि देखो यहाँ पे भी दिक्कत है, ऐसा नहीं कि ये बहुत खुश है। तो हंसने लग गए थे। बट इसमें मुझे जो मूल बात, जो गहरी बात लगी कि जो टीचर के फेवरेट होते हैं वो ज्यादातर बाकी बच्चों को पसंद नहीं आते, लेकिन उनपे जो प्रेशर होता है वो खुद उससे जूझ नहीं पाते। कभी कभी उनको बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन क्योंकि वो टीचर के फेवरेट हैं, हर बार सिलेक्ट होते हैं, उनकी मंशा के बारे में कौन सोच रहा है, क्योंकि बाकियों को तो लगता है तो बेस्ट है।
5: वैसे स्कूल के अंदर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए।
4: ये एक तरीका है बोलने का, फेवरेटिज्म हो रहा नहीं हो रहा है वो
5: ये जरूर बात है कि एक बच्चा अगर कोई आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, सब काम करता है, इट्स अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप एक टीचर हैं तो आपके भी जो ब्लेसिंग्स हैं उस बच्चे के प्रति रहती हैं।
4: जी।
5: एक बच्चा है जो टीचर को भी तंग करता है, टीचर के बारे में भी बोलता है। थोड़ा सा अगर आप बहुत केयरफुल और माइंडफुल नहीं हो तो ये ह्यूमन बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाता है। बट एवरी टीचर शुड ट्राई।
4: जी।
5: देखो टीचर का काम है हर एक को एम्पावर करना। मना जो जितना कमजोर है उसको उतना ज्यादा प्यार और अटेंशन चाहिए।
4: वो ज्यादातर होता नहीं, उल्टा होता है।
5: होना तो चाहिए
4: ना। ये क्वाइट है, ठीक है, पीछे बैठे रहो तुम।
5: वो एक स्टोरी भी सुनाते थे ना हम लोग पहले सुना करते थे कि वो एक बच्चा था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली ही वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड या कुछ, तो उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, शैबिली ड्रेस्ड होता था, क्लास में कोने में बैठा रहता था, तो वो टीचर को पसंद नहीं आता था, ज्यादातर डांट खाता था। एंड उसके जो ग्रेड्स को देखते हुए जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी अच्छी नहीं थी।
4: जी, तो मेरे बारे में बात कर रही हैं आप।
5: किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है ये, स्कूल में कहीं पर देखा जाता है। एंड देन टीचर्स डे आया, नॉर्मली आप देखते हैं बच्चे बहुत प्यार से टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं।
4: जी।
5: तो वो बच्चा भी, सब बच्चे बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के आए, रैप करके, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो बच्चा था लास्ट में ये भी आया और उसने भी एक कोई हाफ फिल्ड परफ्यूम की बॉटल थी।
4: अच्छा।
5: और एक थोड़ा टूटा हुआ ब्रेसलेट था जो उसको दिया, तो टीचर को लगा ये कैसा गिफ्ट है ना। स्टिल शी टुक इट। एंड देन लेटर दैट टीचर फाउंड आउट फ्रॉम अदर टीचर्स, उसने जब बात करी इतना शाबी है, इसके ग्रेड्स ठीक नहीं है, देखो ये कैसा गिफ्ट दिया है। तो फिर किसी टीचर ने उसको बताया कि व्हेन ही वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड ही लॉस्ट हिज मदर एंड फादर जो है अभी ही इज टुक अप टू ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक हो गए हैं, सो देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम। एंड जो ये एम्प्टी, हाफ एम्प्टी परफ्यूम बॉटल है प्रॉब्ली ये उसकी मदर की है। सो कुछ जो उसकी स्टोरी बताई, देन द टीचर वेंट बैक एंड शी लुक्ड एट ऑल द ग्रेड्स जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड में थे, एंड ही वॉज अ वेरी हाई अचीवर, सब कुछ था। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे that you know he was behaving in such a manner. I don't really remember the story very carefully, but what touched me was that next day wo perfume laga karke gayi, the child hugged that teacher and said the first time I smelled my mom.
4: Kya baat.
5: So you know यंग बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजों से गुजर रहे हैं, हर एक के घर में क्या होता है। जब वो एक टीचर के पास आते हैं, इट्स लाइक अ सेकंड पेरेंट।
4: बिल्कुल सही।
5: तो उस बच्चे को जज करने के जगह थोड़ा सा अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें उसका पास्ट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, एंड देन दैट टीचर स्टार्टेड पेइंग paying attention on that child. Mm. And then he started doing well again. And they became so close that on his wedding, he called that teacher and she came wearing that bracelet.
4: Kya baat?
5: The same bracelet.
4: Khubsurat.
5: So, the whole thing was ki usme us teacher ne kaha ki hota to hum hai ki hum bachchon ko sikhaye. But actually, ye bachcha mere jeevan mein mujhe sikhane ke nimit bana aur ek mod lane ke nimit bana. I really feel that, you know, all souls are going through a lot and every teacher need to try and understand ki wo bachcha kis cheez se guzar raha hai.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। डॉक्टर सुरिल दवे हैं, अहमदाबाद से लिखते हैं। हाय सिस्टर श्रेया एंड विशाल सर, पहली बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा नाम विशाल सेठिया है, विशाल सर नहीं है। सिस्टर श्रेया आप जरूर पुकार सकते हैं इनको, प्लीज मुझे विशाल कहें। वो लिखते हैं कि मैं पिछले 2 महीनों से एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। अभी कुछ टाइम से मेरी मैनेजर काम करने का तरीका जो उनका है वो पूरी तरह से बदल रही हैं। पहले वो मुझे काम का एक तरीका समझाती हैं, फिर दिन के एंड में कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें दूसरे तरीके से करना चाहिए था। इस बात पर वो मुझे ताने भी देती हैं और क्रिटिसाइज भी करती हैं, जो मुझे मेंटली अफेक्ट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ।
2: किसी के साथ भी हम काम करते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है
1: जी,
2: नहीं तो वो हमारे काम पर इम्पैक्ट करता है। और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो एक स्टेबल माइंड होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता मेंटली
1: बिल्कुल
2: थोड़ा भी
1: परेशान
2: रहना, बिकॉज सी एज अ डॉक्टर हर एक को समझना है कि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं
1: जी।
2: कई बार अपने लव्ड वंस को पूरा का पूरा आपके आगे सरेंडर कर देते हैं। तो हमारे लिए काम स्टेबल होना, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो जो एक रिलेशनशिप है आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि वो बहुत टॉक्सिक है, आप सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी अगर वो शिफ्ट नहीं आ रहा है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू, देन मे बी यू कैन ट्राई working at another place also, but वो last option हम रखते
1: जी,
2: हैं।
1: बिल्कुल।
2: पहला option हमेशा conversation का होता है कि हम उनको समझने की कोशिश करें। अब इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज कभी कभी होती है तो समझ में आता है,
1: सही बात है।
2: अगर ये daily हो रही है
1: सो
2: देन इट इज नॉट वर्किंग स्टाइल, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है।
1: राइट।
2: आप कई बार देखिए वर्किंग स्टाइल में आपके अंदर कोई कमी या गलती है तो महीने में 4 बार वो बात होगी, 2 बार वो बात होगी, मुझे आपका कुछ ठीक नहीं लग रहा।
1: लेकिन रोजाना नहीं हो रहा।
2: लेकिन अगर रोजाना हो रहा है तो मुझे आप ठीक नहीं लग रहे।
1: सही बात है,
2: दोनों में बहुत फर्क है। आप ही ठीक नहीं लग रहे हैं तो देन आई फिगर आउट सम वे कि आपको कुछ ना कुछ नहीं, मैं कुछ ना कुछ आपसे लड़ने के लिए या आपको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी तरीका कोई भी बात उठा लेती हूँ। तो थोड़ा डीप में जाएं, क्या प्रॉब्लम है? इंटरनल जेलसी है, इनसिक्योरिटी है, कोई पहले का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, रिजोल्व करने की कोशिश करें।
1: और शायद जो आपने कहा ना, जो छोड़ना है वो शायद आखिरी कदम है, उसके पहले शायद एक कदम और है। आपने बहुत पहले एक बहुत कमाल की बात कही थी कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा होगा, तो उसमें कह सकते हैं कि इस वक्त मैं तेरे ताने भी सह लूंगा, खराब है मेरा वक्त ये सोच कर रह लूंगा।
2: खराब है वक्त न कह कर के, आपको पता है कभी कभी अगर हम किसी डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं हम कितने स्ट्रांग बन जाते हैं एक्चुअली।
1: बिल्कुल।
2: अगर हम चाहें तो उसका शुक्रिया कर सकते हैं कि आपके ऐसे बिहेवियर से मेरा खराब वक्त नहीं है, लेकिन मेरी इतनी रेजिलियंस बढ़ गई कि अब तो मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ।
1: वो कहते हैं कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रांगर। बिल्कुल, बहुत सही बात।
2: बट देन यू नो अगेन व्हाई आई से इज एक्चुअली वी शुड नेवर नेवर थिंक ऑफ लीविंग अनटिल एंड अनलेस इट इज अनएथिकल।
1: राइट।
2: बट कभी कभी नाउ इट हैज स्टार्टेड टेकिंग सच अ टोल ऑन पीपल, इतना ज्यादा कि वो एक्सट्रीम तक सोच लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइड कमिट करने का सोच लेंगे। अभी सुसाइड्स भी कई बार आप क्या सोचते हैं, 23 ईयर ओल्ड था, 24 ईयर ओल्ड था, बिल्कुल ठीक ठाक था, मीटिंग में था, अचानक ऐसा हो गया। सो उतना एक्सट्रीम में जाने से तो फिर आप वर्क शिफ्ट कर लें, और नहीं तो फिर आप उस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करें
1: जी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my beautiful Desi people. This is your girl Priscilla. And yes, chai garam, coffee garam aur baate garma garam lekar aa chuki hoon. Mirchi Mornings shuru ho chuka hai. So whether you're stuck in traffic, pretending to work from home while actually hunting for a second coffee, ya phir just missing that cutting chai vibe from back home, consider me your daily dose of music, masti and much more. Aur abhi honestly, yaar, ye life jo hai, aajkal badi wild chal rahi hai. Ek side par LinkedIn professionalism chal raha hai, dusri side par mom ke messages bhi saath mein chal rahe hain. Aur aaj ke show mein kya chalne wala hai? Full on Bollywood ka gossip hone wala hai. Feel good vibes to rehti hai hamesha. Music that is banger. एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है मेरी मधुर आवाज में, यानी कि प्रिसिला तुम्हारे साथ में है. मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो. फटाफट से मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. फिलहाल गर्मा गर्म बैंगर्स चलाते तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieva la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. My bank support.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
4: बात है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: बता सर, आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देना.

0: पड़ेंगे।
1: पागल पागल
0: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
0: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है विपिन?
0: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: अब
0: तो फंस गए सर।
1: हेलो
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
4: इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: Did you know many communities across NJ12 feel underrepresented in Washington? Now NJ12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ12. Rooted in NJ12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
11: Listener MI, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय देसी बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बकल अप क्योंकि हम चलने वाले हैं आज की डेट में पुराने जमाने में क्या हुआ पता करने. सबसे पहले 1881 क्लारा बार्टन स्टार्टेड द अमेरिकन रेड क्रॉस इन न्यूयॉर्क. देन इन 1904 फीफा वाज फाउंडेड इन पेरिस. और तब से दुनिया में दो टाइप्स के हार्ट ब्रेक्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स एंड पेनल्टी शूटआउट्स. 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग फ्लू सोलो नॉनस्टॉप फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस. एक बंदा एक प्लेन, जीरो वाईफाई, जीरो गूगल मैप्स. भाई हम लोग तो जीपीएस के बावजूद खो जाते हैं. देन 1932 में आइकॉन अलर्ट. अमेलिया एहार्ट बिकेम द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक. और इंडिया की साइड पे 1981 में इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन. एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, 1991 में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी वॉज असैसिनेटेड in Tamil Nadu. Today is observed as National Anti-Terrorism Day, reminding us how important peace and unity really are. Also, today is World Day for Cultural Diversity, which honestly feels perfect for us Desis abroad, right? ऐसे दोहरी जिंदगी जीते हैं हम देसी लोग. फिलहाल मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टा एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. That's 9033 मिर्ची. It's as simple as that. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, योर वाइबिंग विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड द इंटरनेट हैज ऑफिशियली लॉस्ट इट्स माइंड। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी मेट इटलीज पीएम जॉर्जिया मेलोनी इन रोम एंड गिफ्टेड हर अ मेलेडी चॉकलेट पैकेट। यस, मेलेडी, ये वही चॉकलेट है जो बचपन में हम बहुत खाया करते थे, फिर सडनली डिसअपीयर हो गई लाइफ से। एंड नेचुरली द इंटरनेट वेंट मेलेडी बिकॉज मोदी प्लस मेलोनी इज मेलेडी। देसी पन गेम रिमेन्स अनडिफीटेड ग्लोबली। Meloni herself posted the video on Instagram and boom, over 3 million likes were there instantly. Even Bollywood celebs jumped in. Priyanka Chopra, Bhumi Pednekar, Bipasha Basu and Unni Mukundan all reacted to it. Bhumi ne literally comment kiya, living for this. And iske baad literally Melody went out of stock. Ek choti si chocolate and suddenly everybody is remembering school ke canteen, 5 rupaye ke snacks and fighting cousins for the last Melody packet. वैसे जितने ज्यादा लोग इसे appreciate कर रहे हैं उतने ही ज्यादा लोग इसे थोड़ा सा not so cool कह रहे हैं। कुछ लोग इसे cringe भी कह रहे हैं। What do you think about it? मुझे WhatsApp करके बता सकते हो 9033 मिर्ची पर, that's 9033647244, या फिर Insta पर मुझे directly message करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my chai loving people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग. जरा वेदर का हालचाल सुनने वाले हो. सो अभी फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 59 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स अ बिट क्लाउडी आउटसाइड. थैंक्स टू द विंड इट्स मेकिंग इट फील लाइक 56 डिग्रीज फारेनहाइट. एंड डोंट ट्रस्ट द काम स्काइज टू मच बिकॉज रेन इज एक्सपेक्टेड टूडे अराउंड नून. पिछले 24 घंटों में अराउंड 11 मिलीमीटर्स की बरसात हो चुकी है एंड नेक्स्ट 24 आवर्स कुड ब्रिंग अनदर 3 मिलीमीटर्स की बरसात. सो यस, आज के दिन अपने बाल स्ट्रेट करके तो बाहर बिल्कुल मत जाना वरना बारिश नहीं तो ह्यूमिडिटी से अगेन सामना हो सकता है. आज का टेम्परेचर इज हैंगिंग बिटवीन 58 डिग्रीज फारेनहाइट टू 64 डिग्रीज फारेनहाइट विच इज वे कूलर देन यस्टरडे. कल का टेम्परेचर ना फुल बॉलीवुड प्लॉट ट्विस्ट टाइप था. फ्रॉम 64 डिग्रीज फारेनहाइट इट वेंट ऑल द वे टू 93 डिग्रीज फारेनहाइट. मतलब एक ही दिन में यू आर ड्रिंकिंग आइस्ड कॉफी एंड साथ साथ में अदरक वाली गर्मा गर्म चाय इन योर ब्लैंकेट. And that's the weather for you today. अभी फिलहाल बाहर निकलते वक्त क्लियर के प्लेयर बनना जरूरी है. साथ साथ में अपना SPF 50++ लगाओ और ढेर सारा पानी पियो. Keep yourself hydrated. एंड मिर्चीदार गाने सुनने के लिए मिर्ची को अपने साथ रखो. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vizba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K/5/14A फर्स्ट फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है.
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my dudes. This is your host. Show ka naam hai Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla. And television's favorite couple Karan Kundra and Tejasvi Prakash just gave romance a full Bollywood ka climax moment on a reality TV show called Desi Bling. Karan ne proposed kiya Tejasvi ko with a giant "Will you marry me?" sign written across the water. And Tejasvi's reaction was full of emotions. She said, "I'm shivering and my hands are going to stop." She also spoke about how the two have spent 4 years together and have been through everything. But wait, because no celebrity love story is complete without some social media drama. Soon after the proposal aired, Anusha Dandekar posted a cryptic, "I'm thanking God, if you know, you know," online. Reactions started flying everywhere very, very fast. And honestly, desi audience jo hai na, wo relationship ke timelines ko aise treat karte hai jaise wo PhD ka research project ho. And kyunki proposal, engagement, शादी और थोड़ी सी ड्रामा की बात करी रहे हैं, तो शाउट आउट टू आरके जूल्स जो तुम्हारे लिए ऐसे ऑफर्स लेकर आए ना जो कि डेंजरस इन्फॉर्मेशन हो सकता है अगर तुम सीक्रेटली अपना प्रपोजल प्लान कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर जाकर तुम इमोशनली इम्पल्सिव शॉपिंग तो कर ही लोगे, बिकॉज ऑफर्स इतने अमेजिंग है. ऑफर पता क्या है, दे आर गिविंग यू रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस विद जीरो लेबर चार्जेस एंड जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस, यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रियल डायमंड ज्वेलरी मिल रही है एट रियल प्राइस, नो एक्स्ट्रा चार्जेस. तो वहां जाओगे तो एक रिंग तो पक्का से बनती है अपने सीक्रेट प्रपोजल प्रैक्टिस के लिए. और अगर बैकग्राउंड में बजाने के लिए तुम्हें गानों की रिकमेंडेशन चाहिए तो वो मैं प्ले करने वाली हूँ अभी. आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. And while you practice your secret proposal, here are some Mirchidhar bangers for you. Stay tuned and stay hot.

0: 9:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आर के ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: रेडियो मिर्ची इट्स ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय बर्थडे बेबीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सेलिब्रेट करने वाले हम तुम्हारा स्पेशल डे. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड अगर तुम्हारा बर्थडे आज है तो किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो तुम? सबसे पहले वी गॉट लेजेंडरी मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल, अ मैन हु सो टैलेंटेड ही कैन मेक यू लाफ, क्राई एंड क्वेश्चन योर लाइफ चॉइसेस ऑल इन वन मूवी सीन. एंड वी ऑल्सो हैव ओलंपिक डाइविंग चैंप टॉम डैली. And shout out to quirky English comedian Noel Fielding. Plus poet Alexander Pope was also born today. So whether you're celebrating with cake, chai, tacos, biryani, ya phir just surviving adulthood one iced coffee at a time, today is your big day. Take pictures, eat extra dessert, ignore the calories respectfully, and you can send me your pictures and invites. Bhi bhej sakte ho at Mirchi Pris on Instagram and X, and WhatsApp kar sakte ho 9033 Mirchi par. That's 9033 647244. Filhal chipak ke baitho yahin par. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रेडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइजेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। पर अब टाइम है मिर्ची आवर का थ्री का। सबसे पहले रिपोर्ट से सेवरल इंडियंस इन द यूएस हु वर लेड ऑफ बाय मेटा आर एक्सप्लोरिंग लीगल वीजा ऑप्शंस टू स्टे इन द कंट्री व्हाइल सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स। मेनी H-1B वर्कर्स आर रिपोर्टेडली अप्लाइंग टू टेम्पररीली स्विच टू B-2 विजिटर्स वीजा, व्हिच कुड बाय देम एक्स्ट्रा टाइम, बट अप्रूवल्स कैन स्टिल बी डिफिकल्ट। नंबर टू पर नेपाल इज डिस्कसिंग समथिंग कॉल्ड एज रोमियो जूलियट क्लॉज। इन सिंपल टर्म्स इट्स अ प्रपोजल मेंट टू अवॉइड ऑटोमेटिकली ट्रीटिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन टीनेजर्स close in age as criminal cases. In simple terms, it's a proposal meant to avoid automatically treating consensual relationships between teenagers close in age as criminal cases. The proposed clause could create limited expectations where the age difference is 3 years or less. It's a pretty sensitive topic but very important. And number three per from cricket, a report claims that MS Dhoni could leave CSK after IPL 2026 because of reported disagreements with management. It's an important reminder though, this is based on reports only and there has been no official confirmation yet. But still, the thought of Dhoni not being part of CSK feels illegal and emotional. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. For this hour, main hoon Prisala, tumhare saath main in-store expert mujhse कनेक्ट करने के लिए ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करने के लिए नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iscaba la buscaba la sacaba la. Burga, burga. La virgo a la burga. Mirci, burga.
2: हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center, Piscataway ki or se, aap aur aapke parivar ko Guru Purnima evam Rudrabhishek Mahotsav mein snehapoorn amantran. Shanivar 1 August ko subah 10 baje Shivji Rudrabhishek aur sham 5 baje Virat Deep Yagy. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Tera kya hoga Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
15: Ab mirchi kha.
17: Radio Mirchi. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिस

0: आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्रिवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
1: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है.
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जनिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: लगता है कि अडल्टिंग मींस मुझे वो चाहिए, दैट टर्न्स इनटू हे उस टेबल पर क्या ऑर्डर किया है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। बचपन के वो दिन याद है, कितनी नादीदी आंखों से हम दूसरों की टेबल पर देखा करते थे, या किसी का ऑर्डर अगर रेस्टोरेंट में हमारे पास से जा रहा होता था तो फौरन बिना लेफ्ट राइट सेंटर देखे कि कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है, हम अपने पेरेंट्स से शिकायत करने लग जाते थे कि मुझे भी वो चाहिए। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं होता था, ये किसी की घर की शादी हो, किसी के घर का फंक्शन हो, अपने खुद के घर की बात हो, मेहमान खाना खा रहे हो, तो भी हम जोर से ये बोला करते थे कि मुझे भी वो चाहिए। पेरेंट्स के लिए एम्बैरेसमेंट हुआ करता था, मगर हम बिंदास हुआ करते थे, डंके की चोट पे बोला करते थे वो बात। आज भी वो कण हमारी जिंदगी में रह गया है, मतलब हम बदले नहीं है, बस ये है कि हमारे बोलने का तरीका बदल गया है। मैंने ये चीज नोटिस करी व्हेन ऑफ लेटली हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए और मैंने ना जो दूसरी हमारी बगल की टेबल थी उनके यहाँ पर देखा कि यार कुछ अच्छा सा दिख रहा है जो भी इन लोगों ने ऑर्डर किया है, मगर ये है क्या? हमने मेन्यू में जब देखा तो हमें तो कुछ इतना इंटरेस्टिंग सा नजर नहीं आया। तो आपस में हम लोगों के डिस्कशंस यही हुए कि फाइनली हम जो वेटर है उनसे पूछेंगे कि भैया ये जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो क्या है। वो अलग बात है कि अब हम मुझे भी वो चाहिए वाले जोन से निकल गए हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि लैंग्वेज बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं, बात तो वही है, नादीदापन तो आज भी वही है कि दूसरे की टेबल पे क्या रखा है हमें भी जानना और हमें भी मंगवाना है। क्या आप भी ऐसी हरकतें करते हो? तो डीएम करो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Permite.
1: Escaba na buscaba na sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. Na viva la murga.
2: Milchi, murga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. My bank to put on.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
4: बात है सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: बता सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ऐतराज मूवी जब रिलीज हुई थी ना तो हमारे बड़ों को भी बड़ा ऐतराज था कि ये फिल्म का तो नाम ही ऐतराज है, हमें बड़ा ऐतराज है कि कोई इस फिल्म को देखे। और इस फिल्म को हमने पता नहीं कब तक नहीं देखा था, क्योंकि ये तो राज ही रह गया था कि किस बात का ऐतराज है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, इस फिल्म को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा था कि अरे इसके अंदर तो ऐसे सीन्स हैं और वैसे सीन्स हैं। और जब बड़े हुए और तब देखा, तब तक तो नॉर्मलाइज हो गया था ये सारा कुछ कि हाँ ठीक है यार, जो है सो है। बट डिड यू नो, इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का रोल सुभाष घई साहब ने रिकमेंड किया था कि सुष्मिता सेन करे, लेकिन फिर अब्बास मस्तान जो है उनको लगा कि नहीं, प्रियंका चोपड़ा को ही ये रोल करना चाहिए, तो ये रोल उन्हीं के पास गया। And guess what? Priyanka Chopra won the Filmfare Award for Best Villain for her performance. और ये दूसरी वो female actor बनी after Kajol, जिनको कि ये award मिला था, because Kajol ने पहले इसे जीता for the film Gupt, and then उसके बाद Priyanka came in the line. In fact, Priyanka Chopra ने एक interview में भी कहा था कि वो अपने इस character में इतना रम गई थी ना कि उनकी माँ का reaction भी ये हुआ करता था जब वो घर पे एक certain तरीके से behave किया करती थी, तो उनकी माँ भी उनसे यही कहा करती थी कि snap out of it, यानी कि तुम्हारा जो विलेनस कैरेक्टर है जो तुम सेट्स पे करती हो उसे घर पे मत लेकर आओ, जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड बी प्रियंका चोपड़ा रादर देन बीइंग दैट कैरेक्टर एट होम आल्सो। एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा होता है क्या? मतलब जो रोल आप अपने ऑफिस में प्ले कर रहे हो, आप घर पर भी आकर कुछ उसी तरीके से बिहेव करते हो? लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर अ टीचर, तो घर पर भी क्या आप उसी तरीके से सीख दे रहे होते हो या बात करने का तरीका वैसा हो जाता है? अगर आप ऑफिस में बॉस हो एंड यू आर लीडिंग अ टीम, तो घर पे भी आकर के आपका यही रहता है मामला कि आप अपने घर वालों को एक टीम बना लेते हो एंड देन यू बिकम अ लीडर एंड यू लीड द टीम? ऐसा कुछ अगर है तो डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
5: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 और विजिट aimseducation.edu.
6: नो
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Namaste, Islam and Shastri Akal Bhaiyo aur Behno. I'm Sujit Singh running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
3: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
2: Paid for by Sujit Singh for Congress.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
8: एक ही होता है.
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी एतराज, जिस पर की दुनिया को एतराज था, ये फिल्म काफी बोल्ड मानी जा रही थी अपने जमाने में, और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल दिस फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय अ हॉलीवुड फिल्म.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड यस, ये सच है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी अच्छी तरीके से बेस्ड थी ऑन दी हॉलीवुड फिल्म डिस्क्लोजर, जो कि माइकल डगलस और डेमी मोर की मूवी थी. एंड अगर हॉलीवुड की फिल्म उठा के देख लो ना, तो एतराज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है यार. मतलब एतराज तो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से काफी ट्वीक कर दी गई है सीन्स के मामले में. हॉलीवुड इज जस्ट बोल्ड एंड बोल्ड. कमाल की बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर प्रियंका चोपड़ा एंड अमरीश पुरी वो प्लेइंग The role of husband and wife. Of course, clearly, अमरीश पुरी की जो एज थी वो उतनी बताई गई थी जिनकी उनकी रियल लाइफ में एज थी, एंड प्रियंका चोपड़ा की भी वही उतनी ही कम एज बताई गई थी. एज गैप कहीं पर भी छुपाया नहीं गया था. मगर मजे की बात तो ये हुई कि उसी साल मुझसे शादी करोगी रिलीज हुई, और वहां पर अमरीश पुरी प्रियंका चोपड़ा के फादर का रोल प्ले कर रहे थे. एंड ये वो टाइम था जब अमरीश जी की हेल्थ जो थी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहा करती थी. एंड हुआ ये था कि देयर वाज दिस वन डब सीन जो उनको करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ वो उस डब सीन को कर ही नहीं पाए. और इस बात से एम्पथाइज करते हुए जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस फिल्म को ऐसे ही रिलीज कर दिया विदाउट दैट सीन बीइंग डब्ड. एंड दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि प्रोफेशनलिज्म तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रोफेशनलिज्म इंसानियत के बिना अधूरा है बॉस. सो एट सर्टेन टाइम्स प्रोफेशनलिज्म को बैक सीट ले लेनी चाहिए और इंसानियत को फ्रंट सीट ले लेनी चाहिए. ये प्रोफेशनलिज्म का एकदम राइट बैलेंस है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जोश के बाद मंसूर अली खान ने और कोई फिल्म डायरेक्ट की ही नहीं, मगर ऐसा क्यों?
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। वेल, रीजन सिर्फ एक नहीं है, कई सारे रीजंस हैं। हुआ ये कि 5 साल जोश को देने के बाद मंसूर अली खान ने ये फिल्म बनाई थी, जो कि उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी कि 5 साल देने के बाद होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी उनका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ। दूसरी बात ये कि वो अपने कजिन आमिर खान के साथ बहुत काम किया करते थे, लेकिन वो दौर ऐसा था जब आमिर खान दूसरे डायरेक्टर्स के साथ और दूसरे प्रोजेक्ट में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि मंसूर अली खान की फिल्मों के लिए उनके पास ज्यादा टाइम था नहीं। एंड सो ही इवेंचुअली थॉट ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब। मतलब अब इसको रिटायरमेंट नहीं माने तो और क्या माने। आई जस्ट होप ही कम्स बैक एंड यू नो ही गिव्स अस अ न्यू फिल्म, बट सो फार ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा है उनका। बिकॉज ऑफ द रीजन नाउ ही सेटल्ड इन कुन्नूर और वहां पर वो अब फार्मिंग करते हैं। एंड राइट नाउ करंटली इन कुन्नूर ही रन्स अ चीज फार्म बॉस। हो सकता है व्हाइल यू ट्रैवलिंग टू कुन्नूर आपने कोई होम स्टे किया या कोई जगह विजिट करी, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी मंसूर अली खान्स प्लेस। यू नेवर नो। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
10: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Listener mein back to back gana sunega. Back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Gulel,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारा नाम सोचती हो ना तो चेहरे पर आज तो मीठी सी मुस्कान आती है, लेकिन बचपन में डर आया करता था क्योंकि तुम चीज बड़ी थी मस्त मस्त। जब तुम मेरे भाइयों के हाथ में हुआ करती थी तो मुझे इस बात से डर लगता था कि कहीं ये मुझे निशाना ना बना दे, कहीं कोई चूक ना हो जाए कि मैं उनका निशाना बन जाऊं। और जब तुम मेरे

नियों को जोड़ के और तोड़ के रबड़ लगा के तुम्हें बना दिया करता था ना, तो हम चौंक जाया करते थे कि ये क्या कर दिया, इतना टैलेंट तुम्हारे अंदर कहाँ से आया, ऐसा सोचा करते थे। हालांकि तुम चीज बड़ी सिंपल थी, लेकिन तुमसे काम सिंपल नहीं हुआ करते थे। मेरे भाई जो थे ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए पेड़ों पे से न जाने पत्ते टहनियाँ फूल गिराने की कोशिश करते थे, और ये प्रैक्टिस तब सफल हो जाया करती थी जब हम किसी ऐसी जगह पर पिकनिक बनाने जाते थे जहाँ एक्चुअली पेड़ होते थे और उन पेड़ों के ऊपर फल हुआ करते थे। मजे हमारे होते थे क्योंकि निशाने तो उनके वैसे ही इतने सेट हो चुके होते थे दूसरी जगहों पर प्रैक्टिस करते करते कि अब उनके निशाने एकदम सटीक फलों पे लगा करते थे, और वो फल जब टूट के नीचे गिरते थे वो फल गिराया करते थे, हम उन्हें उठाया करते थे और फिर सारे मिलकर उन्हें खाया करते थे। उफ, क्या जबरदस्त यादें हैं यार तुम्हारी। कभी किसी ने आमले तोड़े तो कभी किसी ने आम, और इन सारी यादों के साथ तुम नहीं रही आम, तुम तो बहुत खास हो गई हो यार। तुम सिर्फ एक खिलौना नहीं थी यार, तुम तो हमारी शरारतों की साथी थी, हम कजिन्स की दोस्ती की पहचान थी, और कभी कभी चैलेंजेस की वजह भी। अब जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, लेकिन आज भी तुम्हारी रफ्तार याद आती है, तुम्हारे निशाने को आज भी दिल पर लेकर बैठी हुई तुम्हारी याद में तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। यू ट्यून इन टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शान और संजीव ने की आवाज में क्या दिल ने कहा मूवी से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: निकम्मा किया इस दिल ने और क्या बात कही है वाकई में। इस बात में तो कोई डाउट नहीं रखना चाहिए हमें मन में कि ये दिल वाकई में हमें निकम्मा कर देता है। और इस बात से तो आप भी राजी हो गए अगर आपने कभी मोहब्बत की है कि जब प्यार होता है ना तो बस प्यार ही होता है और कुछ नहीं हो पाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ बनने दो, क्योंकि एक बार अगर प्यार हो गया ना तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेमी बन के रह जाते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, उसके बाद प्यार मोहब्बत के लफड़े में पड़ना। वेल, ये तो हमें स्कूल में कहा जाता था, कॉलेजेस में कहा जाता था, लेकिन बड़े होते होते ना ये बात तो और ज्यादा क्लियर होती चली गई है। सीरियसली, लाइक अब ना हम जो अडल्ट्स हैं और जो सिंगल हैं उनका भी ऐसा ही जोन होता है कि यार नहीं देखो ऐसा सीन है कि अभी ना इस साल ना मुझे ये अपना जो टारगेट है ये अटेन करना है, तो इस साल तो प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ सकते। वो अलग बात है कि हमारे बड़े जो हैं वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यार अगर ऐसे करते रहे तो कब प्यार में पड़ोगे और कब शादी होगी तुम्हारी, टारगेट्स ही अटेन करते रह जाओगे। लेकिन क्या करें, निकम्मा तो कर ही देता है ना ये दिल। तभी तो कहा है कि आशिकी चाहता है जिंदगी उजाड़ता है, रोके रुके ना कभी ये किसी की कहां मानता है। अब जब प्यार मोहब्बत होती है ना किसी इंसान को तो वही जानता है कि दिन भर कितने ख्वाब देखता है इंसान। उसका मन तो कहीं लगता ही नहीं है ना यार, ना घर में, ना रिश्तेदारी में, ना दोस्तों में, ना यारों में, ना ऑफिस में, कहीं नहीं, सिर्फ एक ही जगह दिल लग रहा होता है। पूरे दिन उस ख्याल में डूबे रहते हैं और शाम को जब मिलते हैं तो बस उस इंसान के अंदर डूबे रहते हैं और फिर वापस से अगले दिन से वही चक्का चालू। तभी तो निकम्मा किया। चलो जी, जाते जाते इस गाने को आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। अगर आपका दिल भी कभी निकम्मा हुआ है, सो दिस गाना इज डेडिकेटेड टू योर लव स्टोरी। और ये मत कहना कि यार वो लव स्टोरी तो चली नहीं यार सारा। देखो यार, लव स्टोरी होती है, वो शादी में तब्दील हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार तो तब भी सच्चा किया ही था ना यार। तो सुनो ये गाना और ये याद रखना कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot।

0: कमल हसन साहब, इनके बारे में बात करने के लिए मेरे पास लव्स ही नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब मेरे पास जो लव्स हैं वो इनकी शख्सियत, इनकी अचीवमेंट्स के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं। ये आर्टिस्ट नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है। ये कुदरत का करिश्मा जब 5-6 साल का था तभी से फिल्मों में काम कर रहा है। इनफैक्ट इनकी पहली फिल्म के लिए इनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर बड़े होकर किस उम्र में इन्होंने फिल्मों में फुल टाइम काम करना शुरू किया, किस तरह रोल्स से इनकी शुरुआत हुई, साउथ में कौन सी लैंग्वेज की फिल्म्स में इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 19 was when I got acting breaks again. I played small roles, villains, comedians, and then comedy, and then from comedy it became the loser who always let his jaw drop, and the girl said, "Oh, you're like a brother to me." That happened for some time, and then suddenly they thought was a good combi. Suddenly I realized Kerala made me a lead role player by the time I was getting my foot into the Tamil industry. I became a star in Kerala, I think it was 1975-76.
0: तो मतलब जब हिंदी सिनेमा में इनका डेब्यू हुआ 1981 में एक दूजे के लिए फिल्म से, तब तक वो साउथ में ऑलरेडी सुपरस्टार थे, तो एक दूजे के लिए बॉलीवुड में उनकी फर्स्ट फिल्म होगी, बट ओवरऑल उनकी ये 101st फिल्म थी। एक दूजे के लिए का वासु, वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर्स प्लेड बाय दिस फिनोमिनल एक्टर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
4: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
4: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे।
4: अब तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
3: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
7: इट्स पटाक।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
12: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
13: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर in demand healthcare careers.
14: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया। अब ऐसा नाम अगर किसी को मिला हो, उनके बारे में मैं करूं बात, मेरी क्या औकात। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूं चारू आपके साथ, कमल हसन साहब। आपको पता है हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म और अदरवाइज उनकी 101st फिल्म एक दूजे के लिए जब सुपर डुपर हिट हो गई थी, उनको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने रिजेक्ट कर दी या वो नहीं कर पाए। एक बार मनमोहन देसाई साहब भी उनके पास गए थे एक फिल्म लेकर। सुनिए इस इंसिडेंट के बारे में, एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मनमोहन देसाई साहब वाज वेरी अपसेट व्हेन आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग अ स्क्रिप्ट। आई थिंक इट वाज फॉर अ फिल्म कॉल्ड अल्ला रखा। आई कुड ओनली अपोलोजाइज बिकॉज़ आई डिडंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट, बट देन ही सेड इवन मिस्टर अमिताभ डजंट आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट। My answer was that probably it sounded cocky to him. I said, he can afford not to ask for it. And I was so excited with him coming, I didn't even offer them tea. So first, this guy doesn't offer me tea, then he asks for script. So there's so many things which went against me. I must have missed many opportunities.
0: हिंदी फिल्मों में कमल हसन साहब ने चाहे लिमिटेड काम किया हो, लेकिन उनके काम की एक अलग ही लीग है। आप सिर्फ 80s की फिल्में उठा लीजिए, एक दूजे के लिए, सागर, सदमा एंड सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम में एक एक सीन में क्या ब्रिलियंट है ये बंदा। इनफैक्ट एक वेडिंग सीन में जो उनका डांस है ना, मुझे लगता है वो डांस ही पूरा का पूरा पैसा वसूल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans, charu ke saath. Sirf Mirchi par.

0: सारी दुनिया के फिल्मों के सैड क्लाइमेक्स सीन्स एक तरफ और सदमा का सैड क्लाइमेक्स सीन एक तरफा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और उस एक्टर के आगे मैं सर झुकाऊं धोक दूं, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर कमल हसन साहब। पर आपको पता है इसी सैड एंडिंग की वजह से सदमा फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम कमल हसन साहब ने जो हिंदी फिल्में की थी एक दूजे के लिए या सनम तेरी कसम, जिसमें उन्होंने बहुत ब्रिलियंट उछल कूद मचाई थी, उसके बाद इस तरह के रोल में पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: See, the thing is, they complained about Sadma. Sadma's a good film. It's still widely appreciated. But what happened with that film was they were looking for the ek duje ke liye boy. But the boy was already a man. He had 100 films behind him. The image, the fixation they have about this boy. It's like the Hindi cinema was shocked. Are we came to see a dance. We thought he'll do some dance somewhere. And now he does a monkey trick in the end. Yeah, it's very sad. It's a good film. But what about the dance?
0: वैसे सदमा में भी इन्होंने डांस किया था जो तब शायद पब्लिक को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन अब अगर आप उसे इस फिल्म में देखें तो बहुत ही अडोरेबल लगेगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: द फिनोमेना कॉल्ड कमल हसन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई 80s में जब हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ, साउथ में तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और हिंदी फिल्मों में भी फिर सेंसेशन बन गए। तो सागर फिल्म वाज सपोज टू बी डिंपल कपाड़िया कमबैक फिल्म, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी, लेकिन सारी तारीफें ले गए कमल हसन साहब अपने इस रोल के बारे में। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई थॉट इट वाज अ ग्रेट रोल सिंस आई वाज विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट एंड दो आई वाज बिजी When I'm there, I didn't have any other work. So I was there on the set improvising, even when Chintu was there. I used to rehearse while some other scene was going on. I was enjoying myself.
0: लेकिन 80s में ये चंद फिल्में करने के बाद वो हिंदी फिल्मों से थोड़े दूर क्यों हो गए?
1: The only reason is that I have this addiction to completing projects and going on to the next. But by the time you finish a project in Hindi, it's 1.5 years. You lose touch. The clothes you're wearing has gone out of fashion. You reshoot. You've gone fatter, slimmer, or sicker, wiser, whatever. So many things happen in the meanwhile. So you miss out on the point. So it's tedious and frightening.
0: मतलब बॉलीवुड की लेट लतीफी और ढीलापन कमल हसन साहब को सूट नहीं करी, बट थैंक्स टू एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी उनकी कोई भी फिल्म आज हम डब्ड वर्जन में या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस ट्रेजर ऑफ इंडियन सिनेमा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ऐसा मैंने सुना है कि फिरोज खान साहब इतने शरारती थे, पता है कितने शरारती थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इतने शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन लगता नहीं था, तो हर स्कूल से उनको ऐसे टाटा बाय बाय नमस्ते कर दिया जाता था कि आप प्लीज स्कूल बदल लें। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चूंकि मैं इतना ज़हीन था और हमेशा क्लास में एक दो तीन रहता था, तो ये बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि आप दूसरे स्कूल में चले जाएं, हम आपको एक्सपेल नहीं करना चाहते हैं, और आप अच्छा है कि आप दूसरे स्कूल में दाखिल हो जाएं। तो ऐसे मैंने 3 स्कूल बदली किए हैं मेरी कम उम्र में।
0: क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, क्या राइमिंग यूज़ की है, जहीन, एक दो तीन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
2: कितने दिन तक?
3: ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो।
2: 4?
3: हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे। आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
15: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे, वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप का वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, मैंने नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाऊं। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की
0: है। ही तारीफ के काबिल भाई, इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: नूरी फिल्म का गाना। बहुत से लोगों को लगता है कि नूरी फिल्म पूनम ढिल्लों की पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, एज लीड मेन एक्ट्रेस पहली फिल्म थी 1979 की, लेकिन एक्चुअली उनकी पहली फिल्म 1978 की त्रिशूल थी। और इस फिल्म में जब यश चोपड़ा साहब ने उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को बोला तो क्या था उनका रिएक्शन, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नेक्स्ट थिंग वाज यश जी सर हम वो ओबरॉय होटल के स्विमिंग पूल में करने वाले हैं एंड सम बिकिनी दे बॉट फॉर मी। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट। सो आई सेड बिकॉज़ आई हैव बीन स्विमिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन अ स्विमर अप टू स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड। फॉर मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, इट्सी बिट्सी वाजंट कंफर्टेबल। सो आई सेड आई विल वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आई एम कंफर्टेबल विद शॉर्ट्स बिकॉज़ I studied gymnastics in school and I was a sports person, but to suddenly wear this little thingy. So finally after much back and forth they got me, I remember, one full piece, one green color one, and then some shorts wali shorts and then something.
0: Well, ye gana tha gapuchi gapuchi gum gum, nursery rhyme sound karta hai. Sun lete hain purani jeans par, main hu charu aapke saath, aap sun rahe hain mirchi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
4: I am not going to bed with you ever again.
3: But why? What did I do?
4: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
3: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
4: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
3: Yes, come soon. Honey!
4: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
5: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1978 की फिल्म डॉन की शूटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत हुई थी ये मेरा दिल यार का दीवाना इस गाने की शूट से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और शुरुआत में ही डायरेक्टर चंद्र बरोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच में एक छोटा सा झगड़ा, एक डिसएग्रीमेंट हो गया। डायरेक्टर चाहते थे कि इस गाने की वीडियो में हेलन जी अल्कोहल की एक बॉटल पकड़े, जबकि कोरियोग्राफर इसके खिलाफ थे। तो डिसाइड ये हुआ कि इस गाने के दो वर्जन शूट हुए, एक जिसमें उनके हाथ में बॉटल थी, एक जिसमें नहीं थी। ये दोनों वर्जन बाद में देखे गए और कोरियोग्राफर फाइनली अग्रीड टू डायरेक्टर्स विजन एंड वर्जन। तो अब अगर हम ये गाना देखते हैं, उसमें हेलन जी के हाथ में अल्कोहल की बॉटल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और हम समा बांधते हैं यहाँ पर थोड़े और म्यूजिक के साथ ऑन।

पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 80s 90s में एक टेलीविजन एड आती थी अंडों के ऊपर, मेरी जान मुर्गी के अंडे, ना ना ना ना ना। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस एड की जो जिंगल की जो ट्यून थी ना, वो एक बहुत पुराने गाने से ली गई थी। इसे कंपोज किया था सी रामचंद्रन ने, लिखा था पीएल संतोषी ने, जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के फादर थे, गाया था खुद कंपोजर सी रामचंद्रन ने, साथ में गीता दत्त, शमशाद बेगम, मीना कपूर की आवाज। ये वाला गाना सॉरी फॉर द पुअर ऑडियो क्वालिटी, लेकिन ये 1947 की फिल्म शहनाई का गाना है, और उस टाइम ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत थी लोगों के दिलों में, और इस गाने में ब्रिटिश कल्चर का सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाया गया है। इसलिए क्या क्या अतरंगी नगीने छुपे हैं पुराने गानों में भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
11: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: मुगले आजम फिल्म और मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर का अकबर वाला रोल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लेट असरानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में सबको मालूम अकबर का रोल कर रहे थे, के आसिफ साहब का स्टूडियो, उनका बेटा मिलने आया एक दिन चम्मी कपूर, और इनका मेकअप रूम बंद था पृथ्वीराज जी का, और के आसिफ साहब घूम रहे थे। आओ बेटा क्या हुआ? बोले पापा से मिलने हैं। नहीं, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? अभी अकबर नहीं आया उनके अंदर। बोले यार ये क्या अकबर नहीं आया, मतलब क्या? कपड़े तो पहने हुए अकबर के। नहीं, वो वेट कर रहे हैं। आप देखिए इतना बड़ा एक्टर और अपना थिएटर चलाते थे, कितने लड़कों को ट्रेन किया, वो आदमी वेट कर रहा कि प्रेरणा इंस्पिरेशन कब आएगी, और क्या से भी वेट करेंगे, आने दो। बेटे को मैंने नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ, नहीं मिलने दिया। फिर एक दिन दरवाजा खुला, बोले अकबर आ गया, अकबर आसिफ चलो।
0: भाई बड़ा पेशेंस और बड़ा वक्त था पुराने लोगों के पास, यूं ही नहीं कल्ट फिल्में बना देते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
5: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
6: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
3: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. कामन एक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Listener mein back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM.

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

देखो देखो वो आ गया।

थर्स्टी का वाइब जब आता है ना, अंदर से एक अलग ही स्पार्क ऑन हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज एनर्जी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, स्टेप्स थोड़े फास्टर हो जाते हैं, थॉट्स थोड़े शार्पर हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस थोड़ा लाउडर हो जाता है। यार जैसे कि ना फेवरेट सॉन्ग का पहला बीट ड्रॉप हुआ हो और बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। और पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यार थर्स्डे आते आते ना प्रेशर पीछे रह जाता है, पॉसिबिलिटीज आगे आ जाती है, काम भी थोड़ा बहुत हो चुका होता है पर उसके साथ एक एक्साइटमेंट भी छुपी होती है। जी हाँ, आज का दिन इंटरेस्टिंग तो है ही, क्योंकि एक दिन और वीकेंड आने ही वाला है। तो आप भी बताइए कि आपका स्पार्क किस चीज से आया है आज, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा स्पार्क तो हमेशा आपके लिए धमाकेदार गाने बजाने से ही आता है। तो चलिए इवनिंग का पहला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, my bank support.
2: हाँ बोलिए
3: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
3: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
2: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है क्या?
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
2: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों कुछ जज्बात वक्त नहीं लेते, सीधा दिल से निकल आते। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रो बैक थर्सडे में यार एक पुराना गाना जो आज भी दिल के उतने ही करीब है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यार जब भी मैं सोचती हूँ इस गाने के लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल है यार, ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर को कितना वक्त लगा होगा। तो अगर आप भी यही सोचते हो ना, तो उसका जवाब है मेरे पास 5 मिनट। बस 5 मिनट में ये पूरा गाना जावेद अख्तर जी ने लिख दिया था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बस कहा था कि एक सिंपल पोएटिक और रिपीटेबल हुक चाहिए, और जावेद साहब ने वो लेजेंडरी लाइन लिख दी सिर्फ 5 मिनट में। और इतना सोलफुल, इतना सॉफ्ट कि गाना बन गया टाइमलेस। तो चलिए, अगर आज आपको कोई स्पेशल याद आ रहा है, तो उसी के लिए आपके लिए थ्रोबैक थर्सडे में ये गाना प्ले करने वाली हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों थ्रोबैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और थ्रोबैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट में मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, सस्पेंस लवर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट, दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है। और वैसे यार, इस मूवी में मोहनलाल रिटर्न्स एज जॉर्ज कुट्टी, और ये ट्रेलर ना बहुत ही ज्यादा डार्क चैप्टर रिवील करता है एज ओल्ड सीक्रेट्स कम बैक टू हॉन्ट हिम। वैसे दृश्यम फ्रेंचाइज के बारे में यही एक बहुत बड़ा चार्म है कि ये लाउड नहीं होती लेकिन दिमाग को फुल टाइम काम पे लगा देती है, क्योंकि हर सीन में डाउट, हर साइलेंस में एक क्लू होता है। तो आप भी बताना दोस्तों, दृश्यम देखते वक्त क्या आप भी डिटेक्टिव बन जाते हो या बस एंड ट्विस्ट का वेट करते हो? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: दोस्तों, एडल्टहुड का भी एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट दो घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Nete.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vie fala burga. Nete, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है? ये
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us? It's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
17: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी लाइफ में सब कुछ सेम लगने लगता है, मतलब सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम गोल्स, पर फिर भी हम थोड़ा पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या इसे बेटर बना सकते हैं। और अक्सर जवाब होता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रीथिंक, थोड़ा सा रीसेट और चीज़ें ज़्यादा अलाइन लगने लगती है। आजकल चेंजिंग मार्केट में भी लोग यही कर रहे हैं, जो उनके पास है उसे ही स्मार्टर बनाने की कोशिश। और जब बात घर की आती है तो ये रीथिंक एक स्मार्ट मूव बन सकता है, जिसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। और इसी को सही तरीके से कैसे समझे और कब ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, यही बताने आ रहे हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: जय सायना मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। चेंज इन द वेदर पैटर्न गॉट लिटिल कूलर And we'll see rain in the forecast. And today, the U.S. markets are in negative territory. Improvement in the mortgage rates. The home buying process might seem a little complicated if you haven't gone through it before. However, if you are working with someone who got a lot of experience helping people with their real estate needs, it can actually be a lot easier than you think. And we at Land Mortgage have been helping home buyers actualize their dreams for years. We can speed up your home search, help arrange the financing work with you to negotiate a good deal, and make sure everything's signed, sealed, and delivered on closing date. If you are interested in finding out more about becoming a homeowner, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. Folks, to make your home buying process an easy one, I'll give you a few very important compensating factors. Number one, good credit history. Number two, verified rental. Number three, large down payment. Number four, stable employment. Number five, increasing income. So friends, buying your dream home or you have refinancing, don't hesitate to call us today at 732-339-3155. And we are still offering zero closing cost refinance option. Lion Mortgage, 732-339-3155 for all your mortgage needs. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन, बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज्यादा आ चुका है। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है। मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है। तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट कर दे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जी मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जंगल है आधी रात
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों। मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है एक एवरग्रीन गाने के पीछे से। जी हां, गाता रहे मेरा दिल, यानी आपने जब ये गाना देखा होगा तो लगा होगा कि वाह क्या हिल्स है, क्या लोकेशन है, फुल पोस्ट कार्ड वाइब्स। देव आनंद जी भी गाते हुए पहाड़ों में घूम रहे थे, एकदम केयर फ्री मोड। पर पर्दे के पीछे का सीन ना थोड़ा हटके था। देव आनंद को पूरा यकीन दिलाया गया था कि ये जो शूट होने वाला है वो रोहतांग पास पे हो रहा है। रियलिटी चेक तो ये थी कि रोहतांग पास था ही नहीं, लोकेशन असल में 12 किलोमीटर दूर कहीं और ही थी। और जब देवानंद जी को पता चला तो वो बोले कि यार ये क्या था, मतलब गाना चल रहा है गाता रहे मेरा दिल और पर्दे के पीछे डायरेक्टर बोल रहे कि यार चलता है थोड़ा सा झोल, मतलब ये क्या हो रहा है। तो कुछ कभी कभी ना मतलब एक्टर्स को भी इस तरह से समझा बुझा के थोड़ा बहुत उल्लू बनाकर ऐसे लोकेशन पे लेके जाते हैं जो लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप समझ गए कि यार लोकेशन भी कभी कभी एक्टिंग करती है और सच इंटरवल के बाद ही रिवील होता है। तो दोस्तों ऐसे पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किस्से अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताना @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया। यार ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाए कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स, किंगडम ऑफ जूल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस, अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
7: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
10: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफर की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Did you know many communities across NJ-12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ-12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ-12. Rooted in NJ-12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
4: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
5: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
4: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islington.
6: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनरा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स GIA सॉलिटेयर्स नेकलेसेस रिंग्स मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स कृष्णा ज्वेलर्स ओक ट्री रोड इसलिन गली

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मजे की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो? वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आजकल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मजे की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो खत्म होके भी मूवी में खत्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। जैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेड आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था। कंपोज्ड बाय प्रीतम, 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। आर फेवरेट आहू आहू, क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं, क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आहू आहू राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर. आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
7: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
6: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9082220002 और विजिट aimseducation.edu.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज्ड बाय प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज ही ऐसी थी, जो रॉनेस उनकी आवाज में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मजे की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्जेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियां फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियां फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Did you know many communities across NJ12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ12. Rooted in NJ12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
3: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
4: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
3: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
4: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
3: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
5: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

मूवी हो या मूड स्विंग, डीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में डीप टर्मरिक पॉपकॉर्न यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर डीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा बाय बाय सायोनारा टू यू। लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।